0: 技能照亮前程，也照亮了上海的夜空。从这里出发，技能的光芒将照亮我们携手共赴的美好明天。
1: Skills change your future and light up the night sky of Shanghai. From here, the light of skills will light our way toward a beautiful tomorrow we share.
2: 女士们、先生们，请第48届世界技能大赛选手代表和专家代表宣誓。
3: Ladies and gentlemen, please welcome competitors and experts to take the World Skills Oath.
2: 请埃塞俄比亚选手代表宣誓。
3: Pharaoh Najiba Lee from Ethiopia, please take your oath.
4: 在所有ተወዳዳሪዎች ስም የስነ ምግባርና አሰራር ደንቡን የውድድሩን ህጎች እንዲሁም የዓለም ክህሎት ሴቶች በማክበርና በመጠበቅ በሐቀኝነት ለመወዳደር ቃል ገባለሁ። ይህንንም ሁሉ በዓለም አቀፍ የክህሎት ውድድር እውነተኛ መንፈስ ውስጥ በመፈጸም እንደምወዳደር ቃል ገባለሁ። ኦስቴከር ፈሮን ነጂብ አሊ
2: 请印度选手代表宣誓。
3: Muskan from India.Please take your oath.
5: मैं सभी प्रतियोगियों की ओर से विश्व कौशल प्रतियोगिता के मूल्यों, आचार संहिता और प्रतिस्पर्धा के नियमों का सच्ची और निष्पक्ष भावना के साथ पालन करने का वचन देती हूँ. Oath taker, Muskan.
2: 请中国选手代表宣誓。
3: Yuna from China, please take your oath.
6: 我谨代表全体参赛选手宣誓，承诺本着世界技能大赛的精神，公平竞赛，尊重。